सहन शक्ति जिस विच ए वस्तुआं आ गईयां, जिस विच ए ताकत आ गई, ओ दुनिया तो ही विलक्षण है। ओदी महिमा अपरम

हंस हंस के कितने तसीहे ता बर्दाश्त कर ले। जालम ने बहुत चाया कि किवें गुरु अर्जन दे अंदर क्रोध दी अग्नि भड़क उठे, पर उन्हानु की पता सी कि शांति दा सोमा जो संसार नु शांति दा उपदेश देण वास्ते आया, ओदे सामने वड्डे वड्डे भांबड़ ओ भी शांत हो गए। दुनिया दे इतिहास विच इको

चारे पासे एक खबर फैल गई। चंदू जिसनू समय दी हकूमत दे बादशाह ने गुरु अर्जन देव पातशाह नू तसीहे दे दे के शहीद करन दा इशारा मिल चुकया सी। ओ चंदू अपने वल्लों उसने कोई कसर बाकी नहीं छड़ी। प्रभु परमात्मा दा खौफ भुल गया, अपना आप भुल गया, सिर्फ एक तशद्दद करना ही उसके सामने। कई तो यह भी कहते ने कि उसने बदला लिया कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी के साहबजादे गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं जदों चंदू दे भेजे हुए दूतां ने रिश्ता कर दिता और आके दसिया कि गुरु नानक दी गद्दी दे वारिश गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे सहजादे साहिबजादे हरगोबिंद साहिब पातशाह उन्हां नूं रिश्ता दे आए हां, तां हंकार विच हौमे विच मतिया होया ए चंदू, क्योंकि सरकारे दरबारे ए नौकरी करदा सी, इनू बड़ा चंगा दीवान दा रुतबा हासिल सी। हंकार विच बोलिया, तुसी चुवारे दी इट मोरी नू ला आए हो, भाओ अपने आप नू उसने बहुत वड्डा दसिया ते गुरु घर नू एक बहुत नीवा दर्शाया, जिसनू सुन के कहंदे ने संगतां ने बड़ा रोस कीता और संगत ने आखिया कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी हो, आप जी ने यह रिश्ता नहीं रहना, वापस कर दियो, मोड़ दियो रिश्ता।

ईश्वर का कोई सबूत दे सकना कोई है? उन्हें बड़ी प्यारी गल का जवाब बड़ा सोहना दिता। एस एस चरण सिंह शहीद उन्होंने इस प्रथा एक निकी जी कविता भी लिखी सी बादशाहियों ने। वो लिखते ने कहने ने पुछण वाले नु जवाब दिता, वो कह लगे देख मैं रब रब करना ते तू ना कर, तेरी मर्जी। जिस दिन जीवन का भोग पवेगा मालिक की दरगाह च पहुंचा जेता वाकई रब होया, उस दरगाह च पहुंच के जेता रब होया ते साडियां पौ बारां ते तेरा जो हाल होगा तू सोच। ते जे रब ना ही होया, जे कोई हस्ती रब की नहीं तू नहीं मनन नू तैयार, ते मैं एक तेनू तेरी गल दे उत्तर कहना चाहना कि जे रब ना ही होया, कोई रब की हस्ती ना हुई ते साडा विगड़ेगा की? फिर जिथे तू खलोता होगा उथे असी खलोते हो, साडे तां दोही अखी लड्डू ने। जे तां होया ते साडी गल बन जानी है, तेरी रह जानी, ते जे ना होया ते फिर जिथे तू उथे असी, कोई फर्क नहीं पैना, तेरे नालों हुण फिर भी चंगे आ। चार लोग धर्मी कहिंदे ने, चार बंदे साध कहिंदे ने, चार बंदे भगती वाला कहिंदे ने, चार बंदे परोपकारी तां कहिंदे ने, संसार वाले तां माण करदे ने चंगा बंदा। आखिर खाण पीण मौजा उड़ाने वाले बंदे दा उहदी अपनी निगाह च कोई सत्कार नहीं, कोई किस दा की माण करेगा? भगती ने मार्ग ते चलन वाले दा फिर भी कोई आदर है, फिर भी कोई सत्कार है। और जेड़े लोग पदार्थां च बहुत फसे हुए, बहुत रजे जापदे ने, जिसले पदार्थां दी अंत हो गई, अज वड्डे वड्डे मुल्कां दी की गल है, उथे पदार्थ बहुत है, विज्ञान बड़ा है, साधन बड़े ने, रुपया बड़ा है, व्यापार बड़ा है, लेकिन वो लोग उस उलझन चो तंग पै के अज कोई हिप्पी बनिया फिरदा है, कोई साध बनिया फिरदा है। कई कई गुरु प्यारे ऐसे भी नितरे जिन्हां नूं गुरसिखी चंगी लगी, उन्होंने गुरसिखी नूं भी धारण किया, धर्म वाले पासे मुड़के परिवर्तित हो रहे हैं, मुड़के मुड़ रहे हैं इस पासे। वो पासा वेख के, वह पत्थर चट के, बेस्वादियां दे मारे, बेरसियां दे मारे, वह एक नवा रस लैण वास्ते, भगती का रस लैण वास्ते जिहड़े धर्म का कोई होका जाके उन्हें दे देवे, वह मुड़के उस पासे परत पैंदे, क्योंकि उन्हें वेख लिया उधर कुछ भी ना लभा। धन दे ढेरां विचों, सुखां दे साधनां दे ढेरां विचों कोई स्वाद नहीं आया। अखीर मुड़ के वह आत्मक रस लैण वास्ते धर्म का पला पकड़ रहे हैं। ते साडे जिन्हां कोल गुरु नानक वर्गी सिक्खी दी दात है, गुरु नानक वर्गी गुरमत है जिन्हां दे कोल, असी लोग उन्हां वल वेख के कहीए कि वह बड़े चढ़दी कला च ने, बड़ा धन उन्हां कोल, बड़े पदार्थ उन्हां कोल, रब नूं याद ना करन वाले बड़े सौखे ने, ते रब नूं याद ना करन याद करन वाले औखे ने। असी क्यों औखे होण वाले मार्ग ते तुरीए, असी क्यों ना पदार्थ वाले राह ते बेईमान हो जाइए, उसे तरह दे हो के ते रुपया इकट्ठा करन ते धन पदार्थ जुटाउण वाले पासे लग जाइए, वह लोग बड़े सुखी ने, शायद असी भी कोई सुखी ना हो सकेगा, इस तरह कोई सुख प्राप्त ना होगा, अखीर परेशानियां पले पैणगियां, मालिक तो विछड़े होए नूं कोई सुख नहीं। जो जी हर ते विछड़े से सुख ना वसन पैण, मालिक तो टुटिया होया कोई सुखी नहीं है। जापदे जरूर ने कि धोखा जिहा भरम जिहा प्रतीत हुंदा है बंदे नूं, और एक ऐसी मस्ती है, एक ऐसी नींदर है, एक ऐसी बदमस्ती ते नशा है कि मनुख जाग के सोचन नूं भी तैयार नहीं। इत्थे साहिबां ने वर्णन कीता है, सुती सुती चाहल थिया, सुतिया सुतिया पदार्थां दे सुख च सुतिया सुतिया दिन आ गया, रात लंघ गई, जीवन दी रात बतीत हो गई। हालांकि रात बतीत कोई नहीं हुई, रात बल्कि लंघनी औखी हो गई। महाराज बाणी कहंदे ने रात ना विहावी साखता, रब तो टुटे हुए बंदियां नूं, वाहगुरु तो टुटे बंदियां नूं जिंदगी बोझ बन जांदी, उन्हां दी जिंदगी दी रात लंघन च नहीं आउंदी। पासे मार मार के जिवें बीमार दुखी बंदे दी रात लंघन च नहीं ना आउंदी, घड़ी घड़ी मुड़ मुड़ के घड़ी वेखदा है, मुड़ मुड़ के तारियां वल वेखदा है, मुड़ मुड़ के वेखदा है रात कदों बीते। इसे तरह आम बंदा ऐसा भी वेखिया गया है कि मौत दी उड़ीक करदा है किहड़े वेले आवे जिंदगी दी रात खत्म हो जाए। इहो जिहे बंदे कुमार्ग पए हुए, गलत राह ते पए हुए, उन्हां दी पदार्थां दी भुख विच सुत्तियां सुत्तियां रात लंघ जांदी। सुती सुती झाल थी आ, दिन आ गया, जिदे बारे महाराज कहंदे ने झाल आ गए, उठ नाम जप निसबासरा रात, अमृत वेला होवे ते उठ के नाम वाले पासे लग, हुण दा अमृत वेला भी लंघ जांदा है, हुण दा झाल भी लंघ जांदा है, झाल आगे भी नहीं उठ सकदे हो। सुती सुती झाल थी आ, भुली वाटड़ी आसी ओ पुठे राह ते पई होई, तैं सह नालो मुतीस तैथो मालिक तो लुटी गई, वखरी हो गई, नखेड़ दिती गई। दुखां तू तरियास जियो, दुख पले पै गए, दुख झोली च भर गए। अंत च अरदास बख्शिश कीती है, तुद गुण मैं सब अवगुणा, मैं अवगुणा नाल भर गई, मैं अपने पले

0: remind ourselves of the joy and the inspiration and the love and the hope and the projection and the prayer that we've been blessed to live in this lifestyle through the role model of Guru Gobind Singh. So it's not only that we're celebrating what actually happened on Baisakhi Day, but the spirit behind what Guru Gobind Singh meant and what he felt throughout his life. So the first Shabad that we're going to sing is Hum Eh Kaaj Jagat Moh Aaye Tarum Hed Gurudev Patai. It's Guru Gobind Singh telling his own story and speaking to us plainly about what he came to this earth to do. So please sing along or sit up straight, close your eyes, meditate, and allow the words of your Guru, of our Guru, to penetrate into your heart so that you leave here feeling like Guru Gobind Singh felt.
1: मैं बस एक गल कहनी चाहता हां कि तुसी अपना बिल्कुल जिदा सी हुन योग जिदा करना सिखया होया रे मन ए विद योग कमाओ पर एक गल है पहला अपना मन नू बिल्कुल शांत करो बिल्कुल हिलना नहीं देना कोई गल नहीं सुनना मन तो बस अपना अखां बंद के दोनों कन्ना नाल सुनना बिल्कुल आसन पूरा पक्का विच बैठ जाओ पूरा पक्का आसन विच बैठो जिदा अपना गुरु साहिबां महाराज बैठदे हैं भावें तुसी हुण अपना जो सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जिदा हुण बैठे हैं हिलदे नहीं तुसी असी सारे जाने इकट्ठे उदा ही बनना एक पुरातन परंपरा हैगे है सारे विद्या जो इंडिया च चलता है वो गुरु शीशा परंपरा नाल चलता है शायद तुसी इस परंपरा का नाम सुनिया होया पर मैं एक गल दसना शिष का मतलब की है गुरु ते शिष शिष हुंदा शीशा गुरु दे रिफ्लैक्शन गुरु दी एग्जैक्ट एग्जैक्ट रिफ्लैक्शन अगर असं यही गल मनते हैं फिर असी अपना गुरु गुरु दे वर्गा बनना सारे सारे जाने सारे संगत कट्ठे आपां अखां बंद करके गुरु गोबिंद सिंह दी यादी च गुरु गोबिंद सिंह वर्गा बनना है।

0: देख लेंगे कृपा होएगा कि नहीं। इसे इट्स अप टू अस टुगेदर।
1: आप जपाए जपे सो नाओ। गुरु गोविंद सिंह जरूर मेहर करेंगे, जरूर, क्यों नहीं। अगर इन्ने प्यारे सिख उन्हें इन्ना जबरदस्ती नाल बुलाते हैं, नहीं मानेंगे? मानेंगे जरूर।

कर प्रसाद गुरुदेव अस्पदे। जय प्रसाद छति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे। जय प्रसाद सुगंधित तन लावे तिसको सिमरत प्रमगत पावे। जय प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर। जय प्रसाद गिरे संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना। जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याये त्यावन जोग। जय प्रसाद पाठ पटंबर हटावे तिसे त्याग कत अवर लुपावे। जय प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय। जय प्रसाद तुझ सब को माने मुखता को जस रसन बखाने। जय प्रसाद तिरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म। प्रभु जी जबत दर गए मान पावे नानक पत से ती कर जावे। जय प्रसाद अरोग कंचन देही लिवलावो तिस राम स्नेही। जय प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत। जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सन्नी पर ठाकुर प्रभु ताके। जय प्रसाद तुझको न पहुँचे मन सास सास सिमरो प्रभु ऊचे। जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे। जय प्रसाद आपूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय। जय प्रसाद असव हस्त सवारी मन तिस प्रभु को कबु न विसारी। जय प्रसाद बाग मिलक तना राख परोए प्रभु अपने मना। जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसे त्याई। तिसे त्याए जो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रख। जय प्रसाद करे पुन बोधान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को सास सास जितारी। जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप। जय प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात। जय प्रसाद तेरी पत रहै गुर प्रसाद नानक जस कह। जय प्रसाद सुने करन नाद जय प्रसाद पेखे बिस्माद। जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहजे बसना। जय प्रसाद हस्त कर चले जय प्रसाद संपूर्ण फले। जय प्रसाद परमगत पावे जय प्रसाद सुख सहज समावे। ऐसा प्रभु त्याग वर कत लागो गुरु प्रसाद नानक मन जागो। जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल न मनो विसार। जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर तू ताको जाप। जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे। जय प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता सिवराच। जय प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपे जप सोए। आप जपाए जपे सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभ सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए। सर्व निदान प्रभ तेरी मिया आपको कछु न किन्हू लिया।

हे करुणा निदान, हे पतत पावन कृपा निदान जगत गुरु, तेरे तो बिना मैनु कोई आसरा नहीं।

0: गंभीरा तन तन वाह वाहो सर्व कला भरपूर शब्द गुरु जी दी पवित्र हजूरी अंदर हयाती दियां चंद खड़ियां संगत रूप विच सफला रहे गुरु खालसा सात संगत माई भाई वीर बुजुर्ग अजीजान बच्चे बच्चियो हाजरीन वकत जियो आओ सारे ही गल के सतपुरां दे दर घर दे मशहूर होविए ते प्यार सहित संपूर्ण फतेह गजाविए
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
0: महाराज जी दी अपार मेहरामत होई है कि आप दी हजूरी अंदर इस जिंदगी दी दौड़ धूप विचों जद्दोजहद विचों कशमकश विचों ग्रिम स्ट्रगल विचों सानू शांत पूर्वक चरण शरण मानन दा मौका बख्शिया है ते आप जी दे अमोलक सुखदाई ते कल्याणकारी महावाकां दा कीर्तन करन सुनन दा इतफाक दिता है। होर भी उस दी मेहरामत होवे जे ए सब सुनिया गाविया हिरदे वसे ते असी अमल पैरा हो सकीए। गुरु जी अपनी ही रहमत नाल ए सारे कम बनदे ने। सतपुरां दा अरशद है आप जपाए जपे सोना, वरना इंसान कुछ कर नहीं सकता, इहदा मन इस पासे रागव ही नहीं हो सकता जब तक उसकी कर्म निवाजी रहमत प्रसाद अनुग्रह शफकत अनायत न होवे। आप जपाए जपे सोना, आप गवाए सोहर गुणगा, इसलिए निरंकार जी दे गुण गाउण दा सुन दा सुधार मिलिया है। एक गल भी सानू याद रखनी उचित है कि गुण ना गाउण नाल उस वाहिगुरु दा कुछ कटदा नहीं ते गुण गाउणा कोई रिश्वत देनी नहीं, इस नाल उस दा कुछ बढ़दा भी नहीं। गुण ना गाउण नाल उस दा कुछ कटदा नहीं ते एक तो लख ते लख तो भी लख जुबान हो जाए, हर चक्कर हर गेड़ नाल उसका जिक्र फिकर विरद सिमरन जाप करिए ते उदा वद्दा भी कुछ नहीं, क्योंकि वो साडे जिहा नहीं कि गलत प्रोपेगंडा होया ते धरती ते आ गए तख्ता, सही प्रोपेगंडा या मनमर्जी दा प्रोपेगंडा होया ते तख्त। अज की दुनिया प्रोपेगंडे की दुनिया है, पर परमेश्वर का ए कोई तुलक नहीं है, ओदे विच कोई वाद घाट नहीं आती। गुरवाक ये सीध बख्शते हैं जे सब मिलके आखन पाए वड्डा न होवे घाट न जाए, तो फिर होछे जाए ख्याल एक उपजते ने कि फिर फायदा की होया जे साडे गुण गाउण नाल उसकी अजमत बढ़ती नहीं है ते मुजम्मत करन नाल घटती नहीं है ते सानू की फायदा होए। अज दी ये कुंतरबाजी ते हुज्जत नहीं है, गुरुआं दे वक्त भी ऐसा होया है जदों महाराज साहिब गुरु अर्जन देव महाराज जी तो ऐसा ख्याल किसे ने पुछया विचार पुछी तां सतगुरां ने आख्या भाई तैनू ते महान फायदा होवेगा, तू उस दे गुण गा जो तैनू फायदा है मैं कह नहीं सकदा, पर मेरी सुरत अंदर मत अंदर बुद्ध अंदर दानिश अंदर ऐसा आंदा है कि परमेश्वर दे गुण गाउण नाल तेरे दिल तो आलूदगी कसाफत गलाजत मैल जन्म

आखण लगे भी जिन्ने तेरे पैसे बन गए मैं देवांगा। पैसे ले लमी तू किराया ले लमी। पैसियां बल देख के मलाह दा मन मन गया, चंगा बई बैठ जा बेड़ी विच। अज दोनों ही जाने लोई दी ते कबीर दी बेड़ी विच बैठे ने। ज्यों ही बेड़ी दे विच चढ़े ने अगों सेठ उठ के खलो गया। ओए मलाह है की करी जांदा है, गरीबड़े आजियां नू मेरे नाल।

लेने ने पांच गुणा ज्यादा मैं तेनू दे देवांगा, इनू थले उतार दे। छोटे लोकां दे नाल बैठण दे नाल शोभा कट जांदी है। ते कबीर

अकबर की पनिया मराना पटने शहर दिया गलिया से बाजारा फिर मार्क की दिखती रिदार इसके कोल दान देने वाले ने बख्शिश की थी मजानिया ए अमर वजन पर बड़ी हैरानी है इससे देने वाला ही कोई

सतसन का रखा उत्सुक कर कर जीवा नानक नाम महारस दिखा अनदिन मन पुस्तक कराया करो भाई गुरु जी पुस्तक मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रचना अमृत पियो सदा सुहेला पुस्तक गुरु चंगा कर दिता है ना ओदे विच भी रह के धन गुरु नानक कहते वाहेगुरु ने पुत्र की दात दिती है पुत्र नाल भी प्यार करो पर ओदे नाल प्यार जरूर करो जिन्हें पुत्र बख्शिया है आखिर पियो एक गुरु बाबा जी कह लगे निंदा करनी है अपनी करो उस्तुत करनी है गुरु दी उस्तुत करो ये गुरुमुखता है ये गुरुमुख दी चाहिए तो प्यारे साथ संगत यह जहां वचन ना बोलिए जिदे नाल किसी का मन दुख जाए फरीद जी ने किया है सब ना मर माणिक ठाहण मूण मचा गवा जे तो प्रिया जी सिके तो न सही गुरु नानक दास जी जिहदा गुरु इतना मिठा हो सिख तो कदे नहीं तोड़ा न पड़े प्यार भरे बचन चंगे बचन करो भाई चंगयाई दुनिया में बढ़ लेंगी सिख दी ये ड्यूटी ड्यूटी है आप जपो

तीन अंत क्रिया एक अंतान कराए जब सतनाम कर हुकुम मस्त का हत्या विचो मार कर गया बड़िया सह सुखे नाम नाम की दात जो जो साल कराए सिमरन नाल जुड़ता है त्यों त्यों मन सुखी हो जाए सिमर सिमर सिमर नाम जीवा तरमर होए के हल्ला चरण कमल तेरे को ही तो सीवा मेरा सतगुरु जी तो आज साल कराए दिए चोरियों पर दिखिया मेरे सतगुरु नानक ने क्यों ना पाए आज खास पूर्व माशी का दिन आपको सीधी पाए साल कराए दिए चोरियों पर ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਝੋਲੀਆਂ ਪਰ ਆਓ ਪਿਆਰੀ ਆਪ ਅਨੁਭਵ ਸਰਬਤ ਮਾਈ ਪਾਈ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੈ।

सतगुरु की प्राप्ति होगी, फिर सारियां दातां किसी चीज की घाट नहीं रहेगी जिन्होंने पूरे गुरु की बख्शिश प्राप्त

पर मोहे है शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। ए मालिक सानू एहो जिया वर दे शुभ कमा तो पिछे ना हटी, जुल्म नू देख के कदम पछा ना खिचिए, साड़ी जान ते बेशक चली जाए। बहुत कुरबानियां कीतिया सिंगा ने, मुगल फौजा ने बार बार हिंदुआं ते हमला कीता, ते सिंगा ने बार बार अपनिया जाना दे के इस हिंद नू बचाया। जिथे सिंगा ने एडिया कुरबानियां कीतिया उथे मामा ने ते छोटे छोटे बच्चिया ने भी अपना खून डोल के सिखी दिया नीयां नू पक्या कीता। फ्रक्शियर दा राज है, हर रोज 100 सिंगा नू मारदा है तां प्रशादा छकदा है। इहदे शिपाही जांदे ने दिन भर सिंगा नू टोलदे रहिंदे ने, शाम तक पकड़ के लै आंदे ने ते इह जुलमी सामने खलो के को के मारदा है। आज जेड़े सिंह पकड़ के लियांदे ने ना, इन्हां दे विच इक 18 साल दा नौजवान, बुढ़ी मां दा इको इक सहारा। जदों मां नूं पता लगा मेरे पुत्र नूं पकड़ लिया है, पापी राजा जुल्मी राजा सिंघा ते कहर टांदा है। मां दा दर्द उठिया, रहा ना गया, राजे दे दरबार विच गई। मेरा पुत्र सिंह नहीं, तेरे सिपाही उनू भुलेखे नाल लै आए ने। बई ठीक है, जे तेरा पुत्र कह देवे मैं सिंह नहीं ते असी उनू छड़ देवांगे, केड़ा है ओ सामने बंधिया होया है। सिपाही लेके आए, असी तेनू छड़ रहे हां, सानू पता लगा है कि तू सिंह नहीं है। अज गुरु दा प्यारा कूक कूक के बोलिया, कौन कहंदा मैं सिंह नहीं, मेरी दस्तार वल तक मेरे चेहरे वल तक तेनू मैं सिंह नहीं लगदा, कौन कहंदा है। ओ सामने तेरी अम्मा खलोती, वो कहंदी है नहीं नहीं ओ मेरी मां नहीं है। अब तक लो सिखी किन्नी प्यारी है सिख नू, ओ मेरी मां नहीं, हो सकता है ओदे पुत्र दी शक्ल मेरे नाल मिलदी होवे, पर ओ सिंह दी मां नहीं हो सकती, क्योंकि सिंघां दियां मामां इंज सिदकों डोल दियां नहीं होंदियां। मां नस के आई, पुत्र कह दे एक बारी मैं सिंह नहीं, क्यों जान गुआंदा है, ते तेनू छड़ देंगे। अज गुरु दा सिंह जोश विच पार आया, याद कर ठंडे बुरज दी कहानी, सरहंद दा साका, अजे बहुते दिन नहीं होए किमें माता गुजरी ने अपने बच्चियां नू सेरे बन के मौत वल भेजिया सी, भुल गई है, याद कर। सिंघा दियां मामा कदों सिदकों डोल दियां ने, ओ ते आख दियां ने जा पुत्रा, अज गोविंद सिंह नू तेरे सिर दी लोड़ है, मेरी कुख सफली होवेगी। पुत्र दियां एहो जियां गल्लां सुन के मां दा सिदक जाग उठिया, ऐ कलगियां वालिया इस हिंदुस्तान दी धरती खातर तू अपना पिता वार दिता, बुढ़ी मां वार दिती, चारे लाल वार दिते, सारा सरवंश वार दिता, ते मैं अपना एक पुत्र लकोई जांदी हां। मां दा सिदक जाग उठिया, आप मुहारे ही मां दे मुख विचों कलगी तरदे जकारे निकल।

को बनज करे, रतन पारखु होए जहरी कहावई। कौडियां विचों पैसे, पैसियां विचों रुपये, फिर सोना, फिर तकड़ा व्यापारी हीरियां दा आखरी स्टेज ते पहुंच गया। भाई साहब जी कहंदे ने हौले हौले तरक्की कीती ते सब तो उच्ची मंजिल ते पहुंच गया ओ व्यापारी, पर शुरू होया कौडियां तो। कौडा पैसा रुपया सुनैया को बनज करे, रतन पारखू हो जहरी कहावई।

लोक पर लोक बिखे ऊंच पद पावई। छाड़ गुरुदेव आन देव को सेवक होए, निफल जन्म कपूत होए हसावई। लोकां दी सेवा करदा, संतां दी सेवा करदा, देव देवतियां नूं मंदा होया मनुख उच्चे ते सुच्चे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरणां विच पुज गया। पर की वेख्या, जेड़ा सीस गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अर्पण हो गया, कोई थोड़ी जी दुख सुख आ गया ते फिर थां थां ते भटकण लग पिया। कदी किसे संत कोल, कदी किसे कोल, कदी किसे देवी कोल, कदी किसे देवते कोल, ते फिर लोग मजाकां करदे ने, आ देखो गुरु का सिख किथे किथे भटकदा फिरदा। आ थोड़े दिन ही होए है, मैं एक प्रेमी गुरसिख नूं पुछया की हाल चाल है, कहिंदा कम तुर नहीं रहा, बड़ा परेशान हां। कहिंदा एक चिट्ठी आई है, ए भेजी है साईं बाबा वालिआं ने, आख्या एदा जाप करो तुहाडे मन नूं वी शांति मिलेगी, ते नौ निधियां अठारह सिद्धियां आउणगियां। ते मैं क्या भोले मनुख की करदे फिर? कहिंदा जिथों नौ निधि मिले असीं ओदा ही जाप करना है ना। एक बारी प्यार नाल बोलिए ते नाल लिखिया सी एदियां 500 कापियां छाप के फिर होर ना पासे वंड। नबज वेख लैंदे ने ए सुहागण किवें अपने मालक नालों टुटे ते नु पतित करिए। ते थां थां ते ऐसियां दुकानां हन, गुरसिख नु बड़ा सावधान होना पैंदा, जिवें पतिव्रता स्त्री सावधान हुंदी है। मैं क्या गुरमुखा, स्त्री सौरे नु भी मथा टेकदी है, जेठ देवर दा भी ध्यान रखदी है, ओदा भी सत्कार करदी है, किसे संत नु दुरकारना नहीं। सत्कार अदब हर धर्म दा करना है, पर जो स्त्री अपना मन ते तन अपने मालक नु देंदी है, वो किसे दूजे नु नहीं दे सकदी। इसे तरह अदब सारियां दा कर, पर अपनी जड़ नु ना भुल, नहीं तां मजाक दा कारण बन जाएगा। तू अज साई बाबे नू मनेगा, कल तेरे बच्चे थोड़ा बहुत ए भी सिखी तो पतित हो जाणगे ते मुनकर हो जाणगे। ना सिख ना हिंदू ना गोरे कुछ भी नहीं रहणगे, ते गुरु की साध संगत। गुरु रामदास पातशाह कहंदे ने, ए गुरु आप ही चाहे तां पल्ला पकड़ाए, नहीं तां असी सिख तां छड़ जांदे आं गुरु। बाबा फरीद जी भी कहंदे, फरीदा ढूंढे दिए सुहाग को,

सतगुरु कहने ने फती शाह राजा बिना मतलब ही साडे ते इसने हमला बोल दिता। सतगुरु कहने ने सी दीवान दे विच बैठे हुए सा, जद हमला होया उपरंत फतेह शाह को पातब राजा लोह परा हम सो बिन काजा। बिना मतलब ही इसने साडे ते हमला बोल

उठी छिछ इच्छं कदा मेद जोरं मनोमत मटकी कान फोरन। कहने नी कृपाल चंद उदासी जी ने आई जरनैल हयात खां दे सिर अंदर ऐसा कुटका मारिया, जद कुटका उदे सिर दे विच वजिया, साहब कहने ने मैं ठीक कह रहा, उठी छिच इच्छन कदा मेट जोरन मनो माखियन मटकी कान फोरन। जद सिर दे विच सोटा वजिया ते उदे विचों मगध दियां छिट्टां इंज बार आईया जिवें कि भगवान कृष्ण ने अपनी मां दी मखन वाली मटकी फोड़ दित्ती होवे।